0: What is primary health care? Primary health care is the first health service we go to for health care. There are many primary health services in Alice Springs, like GP, urgent care clinic, midwife, and dentist. What health care do you need? Are you eligible with your visa type? If you need help, call MISCA on 08-8952-8776 or visit their website, misca.org.au.
1: The Multicultural Access to Primary Healthcare Program is managed by Multicultural Community Services of Central Australia and supported by the Northern Territory Primary Health Network and 8CCC.
2: Primary health care kya hai? Primary health care wo service hai jo aapke liye Alice Springs mein available hai. Is service mein aap GP, agent care, midwife aur dentist ki suvidha istemal kar sakte ho. आपको अपने वीज़ा के मुताबिक ये सर्विसेज मिल सकती है। आपके सवाल के लिए आप मिस्का को 0889528776 पर रिंग कर सकते हैं या उनके वेबसाइट पर miska.org.au पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इस प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं मल्टीकल्चरल कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया मिस्का, जिसको सपोर्ट दे रहे हैं नॉर्दर्न टेरिटरी प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क।
1: द मल्टीकल्चरल एक्सेस टू प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम इज मैनेज्ड बाय मल्टीकल्चरल कम्युनिटी सर्विसेज ऑफ सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया एंड सपोर्टेड बाय द नॉर्दर्न टेरिटरी प्राइमरी हेल्थ नेटवर्क एंड 8CCC।